0: Movie Mode. Movie Mode. Movie Mode. We have to go to the best radio presenter competition. We have to go to the first runner up. Then we have to go to the game. Then we have to go to the game. We have to go to the program. We have to go to the movie mode.
1: Yes.
0: How are you? I'm going to invite
1: you.
0: I'm
1: going to invite you. I'm
0: going to invite you. No, I
1: don't.
0: ए मी मम्मी हार लाशन ना कि मुनीफ़ सुम के दायरा के कंठ तक का किया लोबी कुरामी है।
1: बुढ़ने दाने दम वाला लोबी कुरामी है कहेंगे।
0: ए की ने की वे बुने वे नहीं है की वे असलो बुने वे वी थी वाला लोबी कुरामी है के।
1: ए ये मुनीफ़ ही फिल्मों के दायरा के दें ही मैंने वाला बार कांगा मिसाल का फिल्मों बादा ना एक Lawan ni kau macam ni, anak kau selalu agak hori ha, ikka maulu mata ke hoda, kami lawa kimi ha kado. Eh hori aja ke bara gaya wa mih ha, bima bunyai dah.
0: Tihe macam ni, bunyai dah ni ke. Tapi misalnya small mata lupa ikut tu macam ni, amati ha mami, mungkin film ke daerah ke khobar tak ke bara lobby kurami he, fahog ke lawa tak ke, fahog ufet dun tang hamak iria release wa era, eh mihin wedo, mihin wedo, ikia ageng, gule mih ikut tu khobar lupa, ti tehdet doh mih mai.
1: Eh hamat tehdet.
0: Kya orang kedua ufet dun tak lobby kurang.
1: Divehi ofeddon daga lobby kuranya bune da misa ka sate ke ko nuadiha devida
0: oh he vara goda lobby kuria do lashana baki kahala genre ek gevi ma kamude egota veta
1: ehne den nenge kanne den story aslo reetivi ma reetivi
0: komme kahala story reetivi jariiti
1: eha boda den like and no kanne action movies to
0: action movies ka like and no den ehin kuria utres vara like thriller birueri
1: Biruari dem, var balah he web. Ega story ham riti ya var sali bi itu. Ekam boda ham romantic ecce he var gaya we ekam balah he bani.
0: Ya var ishki mihe tadi.
1: Ishki mihe ke bune bidar.
0: Kong kal watre film ta ke megi ne balani. Ishki ka mong ham ishki film ta. Dengge bohore dive hi ya dem biru pas mo ekki film ta. Visto Hindi, Inggris, dem miharo Korean ecce he sara mihum balah ta do.
1: Evar ke bele karna ge aslo dive sa Hindi ya dem miharo aslo. Waragina bede korean echi
0: hama lobi gechi
1: lobi korean gariti hama lobi gechi
0: oh ema hama war lobi ya dimala da mi heddoti ego to mi wani do te mi edu ge movie mood showing emme kamda film ge waka so haru dakkani nge mi ge ema lashan nang emme kamda film ka nagani kon film
1: hindi ta devahi ta
0: komme kala vis naga fa ta me har me film ko
1: emme riti film ka bonani sanam teri ka sam
0: Sarnam teri ka samdeenge thami mizu abe samamara reet filmenge asu ko bami film ge hasa kamaki
1: mi filmu ga aslo story bara reete to then ending bune vidane dera ending na ina swara reete ending na ke mi filmu ga ini then eti fashion insure nimen den e dia ko ekada e hitu ga haruli harulondo e bune vidan echade
0: ti ka halashi ga kave danta
1: vedane a bune
0: ओके ओके हमें दांती बनाए हमें गुद किसने के देवरा लोब दो एम सानम तेरी कसम के वाहा कम से कम ये क्या रे मी फिल्म का वाह गे कुरुको बने देवे जलाशन बनाने की हिने वाह फिल्म के में
1: कुरुको बने देन्या बनाने कमेंस्वर का बदुना सेब आंहें कुछ जगे देरियोलों में एम ये हा का है दी ऐना देन ऐना के Kuruko bunanya bunaveni ehen kame kurang ulumge terega dimavi mihe deke lobe bebun goddomi aslo den enage femedin misunderstanding nakun dimavi kame ka hedi ekujja kore matlanje hun kantatake ke wahakas meka deke vidan
0: okay ಎಹೆಮ ವರ ಕಮುದಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಕ ಮೆವಿ ಎಹೆಮ ಕಮುದಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಬದಲಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಯಾರು ವೆಫತ ತೀನಿ
1: ತಯಾರು
0: ಕಿತ ಫರ್ಮರ್ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಲಾಫಿ
1: ಮಿಯದು ಸ್ಕುಡಕ ಬಲಾಫ್ ಮೆಹಮ ಮಿಯದು ಎವಿ ಸಾದವನ ಫಹರು
0: ಸಾದ ಫಹರು ಬಲಾಫಿ ಮ ಡೈಲಾಗ್ ಐತಿ ಹುನ್ನಾನ್ ತಾನ ಮಿಸಕ ಬಿಸು ಹಾಲಿ ಮಿ ವೆನಿ ತನೆಗೆ ಕಿಯಾ ಡೈಲಾಗ್ ಎಹೆಮ ಜಿ ಐಹೆಮ ಗುಣ ಇಂಗೆ ನತ
1: ಮಿ ವೆನಿ ತನೆಗೆ ಬುಣ ಫಿ ಅನೈದ ಐಕಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಗೆ ಕೆ ಮಿಸಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಗ ಹೈಲೈಟ್ ಕೋ ಫೋರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸಿಂಗಿ ತಾನ
0: ಓ ಅಸ್ಲತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಹೆಮ ಹಿಂಗ ಫರ್ದ ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಲವತ ಕೊನ್ ಲಾವೇ ಕದಾನ್ ಗೆ ಲವೇ ಫಹು ಕಸುವಾತ ಕಾಯ್ ಕೆ ಹಮೆ ಬದಲ ಕೊಲಾ ಓಕೆ
1: ಓಕೆ

0: जब नजर
1: तेरा चेहरा मिला वाणनी
2: एते आदे गस कैरी होन नहीं रुका
1: दे इलावा एक कौन नेरो
2: इलावा अन्ना नेता कौन होता
1: इलावा ना देते ना कौने
2: इलावा
1: इलावा अन्ना ने कम इलावा एक कौन अन्ना था इम फिर तो मैं ना फिल्म वो दख का तंग कर बोले दे भी विष्णा विष्णा विष्णा अरे लावा मी है दो थी
2: ती है ना बालीवे के इंदा हिसाब था फारु बदागा
1: नो नो नो नो बैर ओ नो बैर हम
2: मैं हरो हो रही है चे ओली के इंगे में ओले
1: इंगा है मरांगल को लमा
2: ऐ थे अन्ना ने थे ना ज्यादा गेंदा हिसाब उनता
1: ऐ ने ज्यादा करनो गेंदे
2: नो ज्यादा उन निकु में गेंद
1: आदे दो
2: हाँ ऐ ना लाइफ
1: बेरी नो ऐ तेरे को ने विस नो
2: ऐ हम भी रो देने इंगे
1: ऐ हम भी मने इंगे दो यहाँ देरा ऐ हम भी माँ ऐलावा अन्ना हिसाब हिंगा हर में विस आदे आ कोल्ला माँ एक ओके कीने वान
2: रंगलवान

0: साह से। वाय लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूह काय ए फोरिया ए जोश किंगुस्तनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट तू जाऊन उठन बिठन लाव नी की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देख तू इधर कच्चे तू
2: हवा अदे रिमिक्स की बदले नो एक हमको लवे के नस्ते आ दिरु में
0: कोमे हो मत वही के मिंदरु दे जहार
2: रिपीट अंगार दो हुगेरे दिहे जहार अदे बुद्ध दो हुगेरे बार जहार
3: नॉक नॉक तेरा बाप क्या
4: Version 2.0 FM, Nuadhi hai ek megahertz.
5: Hey, kudo ko faata jehila ma. Aar mein yaha carry gati mein mihe hum dogu aana. Ye na cha pin number nu friend hisa bagan thi bemaani.
6: ඔබ මිතා හුන ඩස්බින් එහෙරි දෝ මේ වෙස් ඩස්බින කන්නු දාමානේ

0: सांस से। बाय लवता की नुनी में वाहक तके। ये वाहक ता मिहारु आ अड़का आ रूह काय। ए फोरिया ए जोश किंगुस्तनी मुलिंग एहिं दुनिया का।
1: दिवाली ऐसा क्या वाइट है तू? जाऊँ उठना बिठना लाऊँ ये की तू? तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू? इधर कच्चे तू?
0: हाँ वो अधे रिमिक्स की बदले नो। एक हमको लव एक निस्ते आ देरु में। कोम्मे हो मत वही के मिंदरु दे जहार। रिपीट अंगार दो हुगेरे दिहे जहार। अधे बुद्ध दो हुगेरे बार जहार।
2: नॉक नॉक तेरा बाप पाया।
3: Version 2.0 Version 2.0 Nodi ek megahertz divai FM abadus emmegathu

0: सवाल नहीं गे मी बड़ो ता ही दुमी फली उवी कोंबे फ्रेंग ये हा कमियती सैकुरा इब्राहिम नाइम शावियानी कमियती एदुर उमर माफ कलेग फान खले के फान एग फहु नून कमियती इब्राहिम हिलमी बड़ो ता ही बड़ो ता ही ए
1: ऑप्शन ता ही कोबा
0: सैकुरा इब्राहिम नाइम एदुर उमर माफ कलेग फान इब्राहिम हिलमी
1: एदुर उमर माफ कले पान है ही वने
0: ए विमा जवाब
1: सोदिगु
0: ए सोदिगु ए ए नलुस नेती
1: एदुर उमर माफ कले पान है बेजिया
0: आ जवाब रंगले की बतति बदल कुरनी
1: ए ही कुरी सोद बे बुरी है ने हे मीम वानी है ने नो
0: बुने बुने जवाब गोस भी है नो
1: आ
0: आ कोबा
1: ए आसु हिया का बुनी बस
0: ਹੇਕ ਬੁਨੀ ਬੁਨੀ ਵਰੰਗਲ ਵੇ ਫਮਿਯਤੀ ਦੋ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮਕੋ ਬਾ ਲਾਵਾ ਮਿਹਾਰ ਕੋਨਾ ਵੇ ਕੇ ਮਿਜਹਨ ਜੇਨੀ
1: ਇਹ ਬੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਗੇ ਲਾਵਾ
0: ਕੌਨ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤਾ
1: ਕੀ ਅਖਸ਼ਮ ਗੇ
0: ਅਖਸ਼ਮ ਕੋਨਾ ਮੇ ਲਾਵਾ ਕੀਨੀ
1: ਇਹ ਲਾਵਾ ਫਸ਼ਨ ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਸੰਦਰਾ ਵੀ ਟੈਂ ਆਦੂ ਅਨੇ ਹਾਹਮ ਕੇ ਨਿੰਤਿਆ ਦੋ ਵੀ ਵੇ ਦੋ
0: लवा
1: हिसाब देंग समय द मिगटी गड हाय मेन्ना
0: हां
1: देंग फैमिली ये मेन्ना वकिन नंग हासन कुरे खासन कुरे कम
0: ओके
1: वकी वकिन फॉर द हाय मेन्ना
0: हां
1: हास कम हास कम
0: ओके हास कम
1: हास हास के हम से बार बलन शाख
0: नहीं भी आदिस आदि मि हारे पे हीवे तरंगल किए हैं समय हीवे नदिस रंगले नु हें दिखिया को
1: एहने हां
0: खासा
1: बिहार में बस आ देम पा को के मैं ओके है मैं ए बस बदल को यार ए मबारक बोर्ड स्पेशल ही को
0: ती मॉर्निंग गोस भी नती ए एवर मारंगले नो खा की हा की अब प्रैक्टिस को बला देन दुआ को खासा खासा खासा की हम प्रैक्टिस को फाड़ना तींगे ओके ती खास कुरी हुरी हा फरात कला वजह देन वर बड़ा शुक्रिया आएंगे बाकी वेलान वर बाजो है देखेंगे दे। मी हार गडी मी वनी इनव कडी अम मिनट हिंगाफा मूसा के लवे दियम कुरिन गडीर के फेशुन कम गवा आमिल राकु के लवा मी जहाल देन
2: दिवे एफएम के कुम में गडीर के फेशुन मिस दिवे अमिल राके के लवे को

0: Pokémon.
1: Mudike megards divhefum megadi karme kuria megenda game on mehafta ge show ga shahama me nishama haswete vesarakanga ba
2: ha henwe den shahu bonefi fm for the ball on kaka
1: mike me ba ya everyone se
2: ya ready wege
1: ata inge saadem bod war barabar ko mi har den azge fan ne ke bonefi mi har mole ni ki badal ki ha waregge fan ne to azge ti tayar
2: tayar
1: ती फेनेता आजिया गुणों और सवाल तक ऐसा हो कराना इत्यारी जवाब देना दिया सवाल एक कराना मैं हम इनाम कहरी वा मुंडा ने जवाब रंगल वावर का नुबे वावर का दुरुवान
2: ओके
1: ओके तो तैयार हो
2: तैयार
1: तैयार हो जाए मैं फुरत में सवाल उम फशान मरियम अज़ा एक्टिंग के दायरे अंग अलग तारफ वी कौन फिल्म कौन कम बोलने लगे हैं वी यही तैयारी जाप तक है कि हाथ तो हुकुर विलेरे मिहशिम फुरान दंदे
2: हुकुर विलेरे
1: जवाब उरांगर बारा बराबर देवन सवाल मरियम अज़ा के मामे की दिवे ही फिल्मी दायरा के वरम मशहूर फरनाने नम बोलने लगे हैं मरियम निशा मरियम रशीदा ऐमनत रशीदा
2: ऐमनत रशीदा
1: जवाब रंगलो वाह आज जगे मौलू माते बोर हम वारर रंगलों हो दाफा ओके देहा सोल वरना रुनु कोई वारा बड़ो तारु ही बेलिफवा बिरुएरी फिल्में आज जगे ए बैंक रुनु को में फो 4426 ए फिल्म उगा आज जगे नामकी को बैक हम बोलने लगे हैं वे ये तैयारी जवाब की आयशा इलिशा लम्हा
2: इलिशा
1: जवाब रंगलो ए हाद मोले वरण रंगल ओके बॉस मी देहा सतार वना हर के फिल्म में मी फिल्म का अज्जा याय को देम फेनो न फिल्म मी फिरी हम फंडना ने की कोबा इतिहार जाब की यूपे यूनान शम्मु
2: यूनान
1: जवाब रंगल वाव वरण रंगल इंगे अज्जे मिवनी कमरना फिल्म का एने देखी एक्टिंग ना Karnataka International Film Festival ke award le bifa kong award ekam bunel dem vili buni best supporting actress best actress best critics choice of actress
2: di
1: ko ba
2: bisnala ni mehar me
1: ha आदि फर्स्ट सवाल है बे इंगे
2: थीम वन ऑप्शन था
1: बेस्ट क्रिटिक्स चॉइस ऑफ एक्ट्रेस
2: नो
1: जवाब उन्होंने बे
2: बेस्ट एक्ट्रेस
1: बेस्ट एक्ट्रेस ओके देंगे सवाल आज हम इवन ही कोड़ा कुछ जगह को तो का फिल्मी दायरे तारफ फिफा ये कौन फिल्म कौन कम बोलने लगे मी दिहास वाला हर फुरतम इस फैनी इत्यादि जवाब तक कि माजी
2: माजी ना
1: जवाब रंगल
2: इस वाले डिट फिल्म है क्या
1: हाय बोलने सवाल नॉटी 40 फिल्म का अज़ा कोले फवानी कौन खाला रोल है विलन ने के रोल डबल रोल है मामा के रोल
2: नॉटी 40 विलन ने के रोल
1: देहास फन सर्विस वरना हरो अज्जगे टाइटल रोल लकुंगे ने नंदी फवा फिल्म कुंगे ने तारफ फिल्म योनी वारे गिना दोस्त का कफ़ा हुए बोरी मिया ही अज्जा फिल्म देहास फन सर्विस वरना हरो एक ओम फिल्म में कम बने लगे भी
2: ऑप्शन है पैंता
1: ऑप्शन दे ना कामरा कामुलो नीना जवाब रंगल वारे गिना दोस्त का कफ़ा हुए दे मुबने फहरा ये दे फिल्म आये तो कामरा कामुलो जवाब रंगल इंगे देहास नवार वरना हरो लीना मी फिल्म गाज़ा कोले फवानी कौन कैरेक्टर है फातमत लीना मरियम लीना ऐमनत लीना
2: हाँ दे बत तेरे को
1: ए लीना ता ऑब्वियसली किया नहीं
2: अलग क्या बा
1: फातमत लीना ऐमनत लीना मरियम लीना
2: अस तो नहीं गए गए तेरे सवाल के जवाब
1: आ ऐमनत लीना जवाब है नेगी ना माँ ओके अज्जे ऐने के दत्त रिश्मी एकु कफेनी के इंदिया मशहूर वीडियो लवे की कोबा बैवर लव हूँ ना तो
2: ऑप्शन
1: ಎಮ್ಮೆ ಫುರುತಮ ದೆಮು ಹೆಕುಗೆ ಫೆನು ಲವೇಕಿ ಕೊಬ್ಯಾಕ ಮುಣೆ ಅದೇಮ ಹಿಂಗೆ ಏಲೋ ಬಿವಿಯ ಯಾರ ಯಾರ ಯಾರ ದುರು ನುಹುರೆ ವೆಂಜ
2: ಯಾರ ಯಾರ ಯಾರ ದುರು ನುಹುರೆ ವೆಂಜ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಲೋ ಕ್ಯಾಬ್ ಫುರುತಮ ಆಪ್ಷನ್
1: ಏಲೋ ಬಿವಿಯ ದುರು ನುಹುರೆ ವೆಂಜ ಯಾರ ಯಾರ ಯಾರ
2: ಫುರುತಮ
1: ಏ ಲೋಬಿವಿಯ ಜವಾಬು ನಂಗಳು
2: ಅಮ್ಕು ಬೆಲೆನಿ ಅಣೆಲ್ಲವ ಕಣ್ಣೆಗೆ
1: ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಸುವಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಅಜ್ಜ ಕೊಡು ದೇಹ ಸತಾರವಣ ಅವರು ಡಾಕ್ರೇನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೀಲೊ ಬಕ್ಕಿ ಆ ಫಿಲ್ಮೆ ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಅಜ್ಜ ಯಾಕು ಫೆನ್ಗೆ ನಾ ಫಿರಿಹಿಂ ಫಣ್ಣಾಣೆ ಕೇಕೋಬಾ ಅಜ್ಜ ಯಾಕು ಪೇಯಾ ಕೊರೆಫವ ಫಿರಿಹಿಂ ಫಣ್ಣಾಣೆ ಕೇಕೋಬಾ ಜುಮಾ ಫುಬು ಜುಮಯ್ಯ
2: ಜುಮಯ್ಯ
1: ಫಿಲ್ಮ್ ಶಹು ಬುಣಾಣ ಮೀ ಶಹಾ ಮಾಯಕಿ ವರ ಬುಡು ಫೇಣಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಬುಣೆ ಲಚ್ಚೆ ಆ ಬುಣಾಣೆ ಹಿಂಗೆ ಎಮ್ಮಿಮ್ಮ ಮೀ ಹಿಂಗ ಅಣಕಾಸು ಅಜ್ಜಗೆ ಬರ ರೀತಿ ಲವೇ ಹಿಮಣಾವದಿ ಫರ್ಮೆ ಕುರಿಯತ್ತಾನೆ.